0: are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Tuta ne ho ke bole sahi, tuta bandhu dis gahi, toot preet gahi burbol, durmat par har shaddi tol. Tuta ganth pade vichar, gur sabdi kar karj sar, laha sachna aave tota, tripavan thakur preet mota. Thako manua rakho thaye, thahek muyav gan pahitaye, ठाकर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पार कर जाती ठाकर हाई महल बुलाई ठाक ना पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागण ठाकर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिनती डार डरप मुई कर अपने दीठी कंत सुजान डर राख्या गुरे अपने निरपव नाम वखान डूंगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मानो अमृत पिया भरपूर देह देह आख्या सब कोई जय पावे तें दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत टूंडत हाँ फिरी टह टह पवन करार पारे टहते टह पे हौले निकसे पार अमरा जाची हर मिले तिनके हों बल जाओ तिनकी तूड़िया कुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलहार जाओ जो उसारे सो टासी तिस बिन अवर ना कोए गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए हणा को मेरा किस गही ना को हुआ ना होग आवन जान में गुच्ची है दुबदा व्यापै रोग नामे हुने आदमी कलर कंद ग्रंत विण नावे क्यों छूटी है जायर सात ले अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मानो तरवर पंखी पंच तत चुगे मिलेक से तिनको फास नारंच उड़ है ता बेगल बेगले ताके चोग कणी पंख तुटे फाही पड़ी अवगुण पीड़ बनी बिन साचे क्यों छुट्टी है हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छुट्टी है वड्डा आप तणी गुरप्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वड्याईया जय पावे तें दे थर थर कंपे जियड़ा थान में हुना होए थान मान सच एक है काजना फिटे कोए थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा बीचार सुर नर नाथ है नाथ तू नेदाराया दार सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जै देखा तै एक तू अंत न पारा वार थान थनंतर रव रहया गुरसब दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम्या पार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया कर है प्रभ मेल लह खिन मै टाहे उसार

एव छूटै फिर फास ना पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पय बैराए। बीर चले कर अपने बहन बरै जल जाए, बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बालै ने है। जे लोड़ै वर कमनी सतगुर से वैते है। बिरलो ज्ञानी बुझना सतगुर साच मिले, ठाकर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पन पन कड़ी है कड़ कड़ भजै, टाहे उसारै उसरे टाहै। सर पर सोखै पी पर पोखै, समर्थ वे परवाहै। भरम भुलाने पए दीवाने, विण भागा क्या पाई है। गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी, जिन खिंचै तिन जाई है। हर गुण गाए सदा रंग राते, बहुण न पछो ताई है। पब्बै पालै गुरमुख बूझै, तानिज कर वासा पाई है। पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा, आस निरासा तरी है। गुर प्रसादी आपो चीनै, जीवत्या इव मरी है।

समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोलै उदू नानक देहो सच्चा बिचारो। आपे आखै आपे समझै तिसकै उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार ग्रामी तुझका बैसन दीजै। जैसे जल मैं कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द पव सागर तरियै नानक नाम वखाणे। रह एकांत को मन वसिया आसा माहे निरासो, अगमा गोचर देख दिखाए। नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारो। रोस ना कीजै उत्तर दीजै क्यों पाइयै गुरुद्वारो। एहो मन चलतो सच घर बैसै नानक नाम आधारो। आपे मेल मिलाए करता लागै सच प्यारो। हाटी बाटी रहै निराले रूख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइयै औदू बोलै ज्ञाने। तीर्थ नाइयै सुख फल पाइयै मैल न लागै काई, गोरख पूत लोहारी पा बोलै जोग जुगत बिदसाई। हाटी बाटी नींद न आवै पर कर चित न डोलाई, बिन्नावै मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सच वा पारो, खंडित निंद्रा अल्प आहारं नानक तत बिचारो। दर्शन पेख करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेवो खड़ दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोलै गुरमुख बूजै जोग जुगत इव पाइए। अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा होमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै गुर कै शब्द सो समझ परी। खिंथा चोली भरपुर रहया नानक तारै एक हरी, साचा साहेब साची नाई परखै गुर की बात खरी। ऊंदो खप्पर पंच भू टोपी काया कड़ासन मन जागोटी, सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल। कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता। कमन सो आवै कमन सो जाए, कमन सो त्रिपवन रया समाए। घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता। मनमुख बिनसै आवै जाए नानक गुरमुख साहि समाए। क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत् विचार है सो गुरु हमारा। दुरमत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हउमै मेट समाए। सुन निरंतर दीजै बंद, उड़ै न हंसा पड़ै न कंद। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा। किस कारण गृहो तजो उदासी, किस कारण ओ पेख निवासी। किस वखर के तुमन जारे, क्यों कर साथ लंगावो पारे। गुरमुख खोइत पए उदासी, दर्शन कै ताई पेख निवासी। साच वखर के हमण जारे, नानक गुरमुख उतर सपारे। कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे कहो तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो बिचार। सतगुर कै जन्मे गमन मिटाया, अनहत राते हो मन लाया। मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार। आद को कवन बिचार कथिय ले, सुन कहां करवासो। ज्ञान की मुंद्रा कमन कथियले, कट कट।